अस्सलाम वालेकुम सामने, सदाए तुर्किया से मुखातिब आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज 29 अगस्त पर हफ्ता है। इस वक्त अंकरा के मकामी वक्त के मुताबिक सुपहर के 3, पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक शाम के 5, भारत के वक्त के मुताबिक शाम के 5:30 और बांग्लादेश के वक्त के मुताबिक शाम के 6 बजे हैं। सामने पर निश्रियात कुछ शॉर्ट वेव 16 मीटर बैंड 17,580 किलो हर्ट्ज के अलावा 3A ईस्ट और 4A वेस्ट में हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर भी सुन सकते हैं। सामने आज हमारे प्रोग्राम में अलल तरतीब खबरें होंगी, उसके बाद सिलसिला प्रोग्राम देने वाले हाथ की कहानी और फीचर पेश किए जाएंगे। हमारा ये प्रोग्राम हस्बे मामूल 1 घंटे तक जारी रहेगा। आज आपके मेजबान हैं इमरान ओपल।

ये खबरें सदाए तुर्की की उर्दू सर्विस से पेश की जा रही हैं। एक वसीपाने के यूक्रेन ड्रोन हमले में रूस के जनूबी इलाके रोस्तोफ में मुतद अफराद जख्मी हो गए, जबकि पास रहायशी इमारतों को खाली करा लिया गया। वरना यूरी सलोसार ने टेलीग्राम पर तस्दीक के दुश्मन कशदी हमले में 7 अफराद जख्मी हुए। बताया गया कि 4 जख्मी को सूबाईदार हुकूमत के अस्पताल में जेर इलाज ले लिया गया है। उन्होंने कहा कि रात के हमले के बाद एक शख्स की हालत तश्वीशनाक है। जिला प्रोलेतार्स्की में गिरने वाले ड्रोन के टुकड़ों ने 2 बुलंद रहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचाया, जिसके बाद हंगामी हितमात ने रहायशियों को आर्जी पनाहगाह में मुंतकिल किया। अक्साइकी जिला में हुकाम ने गोदाम से ड्रोन के टुकड़े बरामद किए और करीबी जंगल की पट्टी में आग भड़कने की इत्तला दी। बागा यफ्सी जिला में नजी मकाना को नुकसान पहुंचा था, हम किसी जान नुकसान की इत्तला नहीं मिली। यूक्रेन ने ताहाल इस हमले पर कोई बयान जारी नहीं किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीका ने वेनेजुएला के साथ एक बड़ा तेल मुआहदा कर लिया है। ट्रंप ने जुम्मे को ट्रूथ सोशल पर अपने ट्वीट में लिखा है, अमरीका ने वेनेजुएला के साथ एक मुआहदा तय कर लिया है जो दुनिया की तारीख का सबसे बड़ा तेल मुआहदा है। उन्होंने कहा, मेरी हदायत पर वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो, वज़ीर जंग पेट हेक्सिथ, वेनेजुएला की इंतहाई मुअज़्ज़ज़ अबूरी सदर डेल्सी रोड्रिगेज़ के साथ करीबी तालुकात में और निजी कारोबार के इश्तराक के जरिए वेनेजुएला के साबुत शुदा तेल के ज़खायर में से 65 अरब से ज्यादा बैरल